0: मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द विवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा उद्योग में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द विवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade.

0: मुख्याः वार्ताः। भारत बेल्जियम देशयोः व्यापारो द्विगुणी भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना बेल्जियम मन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यनेन सह नवदेहल्यां विहिता शिखर वार्ता। रक्षाक्षेत्रे नवीकरणीय ऊर्जायां च हस्ताक्षरंगताः प्रमुखाः सन्धयः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन बेल्जियम मन्त्रिणा थियो फ्रेडकन इत्यनेन सह क्षमता निर्माणाय कृता मन्त्रणा। न्यूयॉर्क नगरे समायोजितायां गोष्ठ्यां वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितम्। तया कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रे सूचना संग्रह केन्द्रेषु च भारते विद्यमानानां संभावनानां विवरणं प्रस्तुतम्। अपि च किदाम्बी श्रीकान्तः चीन मास्टर्स बैडमिंटन स्पर्धाया अन्तिमाष्ट चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत बेल्जियम देशाभ्याम् अद्य रक्षा सहयोग विषयकेण आशयपत्रेण साकं नवीकरणीय ऊर्जा अन्ताराष्ट्रिय अपराध दमनम् राजनैतिक प्रशिक्षणम् चेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यमुना सह द्वैपाक्षिकीं मन्त्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र पक्षैः सह परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयानां विशदतया समीक्षां विहितवन्तौ। स्वकीये वक्तव्ये प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् सम्पूर्णं विश्वं महतः विप्लवस्य संघर्षस्थितेश्च कालखण्डेन गच्छदस्ति। खाद्य ईंधन आपूर्ति श्रृंखलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अनिश्चिततायाः प्रभावो दृश्यते। किन्तु एतादृशे काठिन्यमये वातावरणे अपि भारतस्य अर्थव्यवस्था स्वकीयां गतिशीलतां रक्षयति। विगत त्रैमासिके भारतेन 7.8% आर्थिक वृद्धिः समंकिता। सः न्यागादीत् यत् भारतस्य विकास यात्रा अद्य विश्वस्य कृते विश्वासस्य नूतनावसराणां च स्रोतभूतो विद्यते।
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
0: सेमीकंडक्टर क्षेत्रे बेल्जियम देशस्य विशेषज्ञता अथ च भारतस्य विपुल विस्तारः परस्परं पूरकौ स्तः। अस्मिन् सन्दर्भे बेल्जियम देशस्य आईमेक संस्थानं भारतस्य सेमीकंडक्टर परिवेशेन सह संयोजयितुं कार्यं करिष्यति। अपरत्र बेल्जियम प्रधानमन्त्री बार्ट डी वेबर भारतं विश्वस्य बृहत्तम लोकतांत्रिक देशत्वेन तीव्रतम प्रवर्धमान अर्थव्यवस्था रूपेण च श्लाघमानः प्रमुख वैश्विक महाशक्तित्वेन च अभिहितवान्। इतः प्राग् अद्यैव रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्वसमकक्षेन बेल्जियम रक्षामन्त्रिणा थियो फ्रेडकिन इत्यमुना सह शिष्टमण्डल स्तरीय वार्ताम् अकरोत्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः न्यूयॉर्क नगरे वैश्विकानां उद्योगपतीनां गोष्ठ्यां भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितवती। सा अवोचत् यत् प्रथमे त्रैमासे 7.8% विकासेन भारतमद्य अपि विश्वस्य द्रुततम वर्धमाना अर्थव्यवस्था अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मार्गदर्शने कृताः आर्थिक परिष्काराः व्यापार सुगमतां वर्धितवन्तः। वित्तमन्त्रिणा वैश्विक अनिश्चिततासु अपि भारतस्य वित्तीय अनुशासनस्य प्रतिबद्धता दृढीकृता। वाराणसी संसदीय क्षेत्रे वर्धमान जलौघं विलोक्य प्रधानमन्त्री मोदी मण्डलाधिकारिणं दूरभाषेण आहूय सकलां स्थितिं

ग्रेट स्मृति मंदाना के पास रहेगी। क्या हरमनप्रीत कौर का ये फैसला होगा कि वो ज्यादा स्ट्राइक स्मृति मंदाना के लिए रखें। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बाउंस के साथ हरमनप्रीत ने गेंद को

0: नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस

0: चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy.